0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखांडे रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकिया हांडे
1: विलाव पासवर्ड देखाई
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: लोतराये पेरलिकरण एनएलबी मेगा पावर तेवंत मेगा सुपरी टैग के अमतरव रुपियाल कोटी का पावर सुपरी टैग सह ग्रैंड सुपरी टैग का सुपरी मोटर रत्या एनएलबी मेगा पावर ओबर अदम मिलदी कान